0: तो इस प्यारे से गाने के बाद आज हम बात करेंगे कुछ नए लेकिन जरूरी टॉपिक्स पर, जैसे एंजाइटी, गिल्ट, सेल्फ केयर और इमोशनल ओवरलोड, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हर दिन की जिम्मेदारियों के बीच अपने आप को भूल जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधा डॉक्टर नीति के पास, जो इस सब के बीच रोशनी का रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं। वेलकम डॉक्टर नीति।
1: थैंक यू रिचा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल माय लिसनर्स। रिचा ने मुझे तो बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आई टोल्ड हर इस प्रोग्राम का सोल वो है। एंड अनदर थिंग, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं जीपी हूँ, बट आई एम ऑल्सो नियरली 62, तो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस और साइंस को मैं मिलाकर थोड़ी सी डायरेक्शन दे रही हूँ आपको, एंड आई एम होपिंग थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको। Over to you, Richa. Questions.
0: बिल्कुल डॉक्टर नीति, और आपका पहला एपिसोड सुनकर हमारे पास इतने सारे ईमेल्स और मैसेजेस आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और आई होप कि हमारे लिसनर्स को डॉक्टर नीति से उनके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है उसमें इनका कहना है कि एक्सप्रेसिंग दैट आई नीड हेल्प विल बी सीन एज अ वीकनेस, स्पेशली फॉर अ मैन विद अ फैमिली, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
1: इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेन की नहीं है, विमेन की भी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, हम ऑफ्टन सोचते हैं कि ये हमारी वीकनेस है, बट यू नो, बात करना, उसके लिए अपने आप को एक्सपोज करना, अपने आप को वल्नरेबल पोजीशन में पहुंचाना, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है। सो दिस इज़ यू नो अ मिथ कि मैं हेल्प मांग रहा हूँ तो मेरे लिए ये वीकनेस है। अरे, आपका टैप ख़राब हो जाएगा तो प्लम्बर को आप बुलाएंगे ही ना, तो बेवकूफ़ी है अगर खुद करना शुरू हो जाए। सो ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए बात करना मीन्स आस्किंग फॉर नॉर्मल हेल्प। ऑफ्टन अपने पेशेंट्स को यही समझाती हूँ कि सबसे मुश्किल काम है कि वो यहाँ पे आए, कितने महीने, कितने वीक्स या कितने साल सोच सोच के आते हैं। एंड यू नो, जब आपने मैन बोला है, आई हैव हैड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स जो 70 इयर्स की एज में, उस इरा के लोग पहली बारी बात करते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं उसके बाद मैं उनसे पूछती हूँ, तो वो बोलते हैं बोझ हट गया। क्यों होता है, मैं पेशेंट्स को ये समझाती हूँ, आपको आदत हो जाती है एक मास्क लगाने की। वो कितने सालों से आप एक हैवी मास्क लगा के प्रिटेंड करते हो पीछे कि यू नो, मैं सब कुछ ठीक है, मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस इंसान को नहीं होती है, मे बी भगवान को नहीं होती, इंसान को तो होती है। तो जब आप वो मास्क हटाते हो और पहली बारी फ्रेश हवा को महसूस करते हो, तो एक बारी अजीब सा लगता है, लेकिन जब वो आदत हो जाती है मास्क के बिना रहने की, उसमें जो फ्रीडम है उसका जब मज़ा आने लग जाएगा ना, तो फिर ये मुश्किल नहीं लगता। इट्स वेरी सिंपल।
0: मुझे ऐसा फील होता है डॉक्टर नीति कि कई बार हम इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं, और वो इनिशिएट जब हम करते हैं तो वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली होती है, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत रिलैक्स कर देती है हमें काम।
1: हाँ, तो वही आप सोचो, हैवी सा मास्क लगा के आप बैठे हो, तो उसकी आदत है, तो उसको हटाओगे तो एकदम लाइट सा लगेगा। तो
0: तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है या इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम किसी की हेल्प चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो चलिए इसी बात पर कोई गाना अगर हो जाए आपकी पसंद का।
1: कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ दो बंधन।
0: अरे वाह, क्या एप्ट गाना लिया है, फिल्म गाइड का, लता जी ने गाया है इसे। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों ये प्यारा सा गाना।

0: तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है डॉक्टर नीति कि आई हर्ड योर रेडियो प्रोग्राम अबाउट मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर वर्मा, इट वॉज रियली इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल। आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट डीलिंग विद बुलीज। My friend gets bullied at school and I think it's affecting them and causing them to be insecure. They are around 17 and are originally from India. How can I help them out? Please keep my location anonymous.
1: ये question ना मुझे पता नहीं कि has it been a question कोई youngster है या आपका friend है जो 17 year old है और आप बड़े हो, because उसको कैसे मैनेज करना है थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर तो आप ग्रोन अप हो आप डिफरेंट तरह से समझोगे, अगर आप यंगर हो तो डिफरेंट तरह से समझोगे, अगर आप भी 17, 18 ईयर्स के हो तो आप थोड़ा उससे पूछो, उसका फ्रेंड बनो बस, और कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आप उसके लिए you know, आप सपोर्ट बन सकते हो सिर्फ। लेकिन अगर आप बड़े हो या किसी एडल्ट को इन्वॉल्व करना हो, स्पेशली पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बुलिंग तो स्कूल में होती है एंड यू नो बुलीज आर कावर्ड्स एसेंशियली। उनको इग्नोर करना सीखना इतना आसान है भी और नहीं भी। आसान इसलिए है क्योंकि वो दे एक्चुअली पोकिंग एट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बार बार आपको पोक करते हैं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप एक बहुत सा आर्मर पहन लोगे तो आपको दर्द नहीं होएगा, वो पोक करते रहेंगे, you know, वो बनना है। और उसको बनने के लिए खुद की सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी, छोटी सी चीज़ें, एक आप अच्छी सी ड्राॅइंग बना लो फॉर एग्ज़ाम्पल and you feel good about it, ek plant laga lo aur usme phool aa jaye, you know, you feel good about it. So simple si cheez hai, work on yourself and automatically bully wo background mein chala jata kyunki aap usko ijazat hi nahi dete ho aapko disturb karne ke liye, because you built up enough self respect. Isme main kahungi especially agar parents involved hain aur parents thoda isko deal karna chahte hain, तो बुलिंग के लिए एम्पावर योरसेल्फ एज पेरेंट्स। आप सीखो, आप ये समझने की कोशिश करो। एंड आई नो स्कूल्स में काउंसलिंग होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम अगर इंडिया से आए होते हैं और यहाँ आए होते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है काउंसलिंग, यू नो, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से ये कहूँगी कि कोई अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से की बुक पढ़ो, थोड़ा सा बुलिंग के बारे में जानो कि बुलिंग क्या इफेक्ट करती है, एंड गो बाय योर इंस्टिंक्ट्स एज पेरेंट्स। यू नो आपके अंदर वो है कि आप अपने बच्चे को जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो टाइम निकालो, गो ऑन डेट्स विद योर चाइल्ड टू गेट टू नो योर चाइल्ड। देन इंस्टिंक्टिवली प्लस नॉलेज वाइज आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उनको ला सकते हो और उनको समझा सकते हो ऑन हाउ टू बिल्ड ऑन दी सेल्फ इस्टीम। 17 ईयर ओल्ड के भी बच्चे होते हैं, 25 ईयर्स की एज में सारे मैच्योर होते हैं, सारे पाथवेज बनते हैं। तो इसी के लिए मैं वो बोल रही थी रिचा से, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, क्यों भूल गए, है ना? आप सिखा सकते हो लेकिन पहले आपको तो चलना आना चाहिए।
0: क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो चलिए ये वाला एक प्यारा सा गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है राजी, हर्षदीप कौर, विभा और शंकर महादेवन ने शायद इसे गाया है। तो इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी जैसे डॉक्टर नीति ने कहा कि अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करें, और हो सके तो पेरेंट्स से अपने मन की बात खुल के शेयर करें, जिसमें पेरेंट्स आपके साथ आपका साथ दे सकें। और अपने आसपास ऐसे लोगों से भी आप डिस्कस कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं और जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, और चलते हैं इस गाने की ओर।

0: दोस्तों, इस गाने को सुनते सुनते मुझे ये दो लाइनें याद आईं, ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी। उड़के एक रोज़ बड़ी दूर चली जाती हैं, घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं प्यारी बेटियाँ। तो वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ होंगी डॉक्टर नीति वर्मा, और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पर। सुनते रहिए 5VBI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा, रिचा के साथ।
1: जब दिल ना करे घर पे खाने का या बनाने का तो क्या करे?
0: भैरवी किचन है ना,
1: घर जैसा स्वाद और हाइजीन अगर दोनों ना मिले तो?
0: अरे भैरवी किचन है ना,
1: चटपटा भी हो और ज्यादा हैवी भी ना लगे।
0: भैरवी किचन है ना,
1: तो जल्दी से एड्रेस बताओ।
0: पैरा हिल्स, वेस्ट एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया 5096।
1: और फोन नंबर
0: 04116511104। भैरवी किचन एक बार जरूर ट्राई करें।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
2: दिस इज फ्राइडे विद रिचा एट 103.1 FM।
0: वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 5VBI 103.1 FM। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी रेडियो हमसफर रिचा। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर नीति हमारे साथ हैं और मेंटल हेल्थ पर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और क्वेश्चंस आए हैं जिसका आंसर डॉक्टर नीति वर्मा दे रही हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हों, तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है radiowithricha@gmail.com और हमारा फ़ोन नंबर है 04573521 63। आप हमें लिख सकते हैं इस नंबर पे और हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये इंडिया से आया है और ये लिखते हैं कि आई एम अ 23-year-old स्टूडेंट इन इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स। आई ऑफ्टन फील एंशियस एंड इवन डिप्रेस्ड व्हेन आई थिंक अबाउट माय फ्यूचर, समटाइम्स अंडर प्रेशर एंड हेल्पलेस। हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माय मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग दिस टाइम? कुड यू प्लीज शेयर सम प्रैक्टिकल एडवाइस डॉक्टर नीति?
3: ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एंग्जाइटी सारी बुरी नहीं होती है। एंग्जाइटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एंग्जाइटी नहीं होगी तो यू विल बी सो लेड बैक, यू विल नेवर अचीव एनीथिंग। सो टेक दैट इन योर स्ट्राइड। हाँ, मैं समझती हूँ कि आपके इस टाइम मुश्किल है, एग्ज़ाम्स हैं, आप बहुत सारे आपके दिमाग में थाट्स होते हैं, पर उसकी मैं साइंस भी बताती हूँ। बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर आपकी एंग्जाइटी काम कर रही है, आपके एड्रेनलिन लेवल्स हाई होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग बार बार बार बार हज़ारों चीज़ें सोचता है, वो एकदम से स्टिल नहीं हो पाता। तो हम उस राइजिंग एड्रेनलिन को कैसे शांत कर सकते हैं? वन, डीप ब्रीदिंग, एक लंबी सांस लो, 1 2 3 इन होल्ड, 3 2 1 आउट। इसको 5 times आप सुबह शाम अगर करोगे तो उससे क्या होता है, आप सीख जाते हो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी समझ जाती है कि यू नो यू हैव टू डू दिस, और उससे क्या है, एड्रेनलिन लेवल जो हाई होते हैं वो थोड़ा डाउन हो जाते हैं। सेकेंडली, समटाइम्स इट हेल्प्स, जो आपकी एंग्जाइटी है, यू थिंक ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो। आपके दिमाग में जो हज़ारों चीज़ें चल रही हैं, आप 10 मिनट बैठिए और सोचिए वो उसके सिनारियो क्या होगा। सारे सिनारियोज को वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देन स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड्स एंड सेइंग, उस वर्स्ट की सिनारियो अगर मेरे साथ हो जाए तो मैं क्या करूँगी? तो आपके पास एक प्लान है, सो मन शांत हो जाता है उसमें, बिकॉज यू नो यू हैव अ बैकअप प्लान, सो देन नथिंग एल्स सीम्स बैड। थर्डली, यू नो आई रिमेंबर जब मैं मिड स्कूल में थी, मैंने छत पे एक बड़ा मोटा मोटा लिख के रखा हुआ था, दिस विल पास टू, एंड मैं आंखें खोलती थी और उसको पढ़ती थी, एंड यू नो दैट यूज टू काम मी डाउन कि ये दिन, ये प्रॉब्लम कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट हैपन्स, हाँ दैट्स व्हाट हैपन्स। तब मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी, आई वॉज अबाउट 20, बट आई डोंट नो मैंने कहीं से पढ़ा और उसको लिख के रख दिया, बट प्रैक्टिकली वो मुझे बहुत काम आता था। And that's the thing. दूसरा Another practical tip I can give you is set aside worry time. Setting aside worry time means compartmentalization. You know, मैंने पिछली बार भी बोला, उसमें क्या है कि आप सिर्फ दिन में 5 minutes निकालो, उसमें जो गुस्सा करना है, जो रोना है, जो मर्जी सोचना है सोचो, but 5 minutes time, that's it, full stop. तो वो एक मन के अंदर जो भड़ास होती है वो निकल जाती है एंड द माइंड क्वाइटन्स डाउन. ये सारे साइंटिफिक तरीके हैं, दीज आर साइकोलॉजिकल थिंग्स. आपने थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स मांगे थे, जस्ट ट्राई देम एंड इफ इट डजंट वर्क टेल मी. ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ सब कुछ काम होता, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, राइट.
0: डॉक्टर नीति, ये जो बात आपने कही भड़ास निकालने वाली कि जब हम जोर से किसी बात को कह लेते हैं, अपने आप को रोकते नहीं हैं, रो लेते हैं, तो मन जो है वो हल्का हो जाता है, किसी मेडिटेशन में या कहीं पर भी ऐसा जिक्र हुआ है, तो ये तो बहुत ही कारगर चीज़ है मुझे लगता है. और मैंने भी थोड़ा कोशिश करी है ऐसा करने की और मुझे भी काफ़ी हेल्प हुआ है. तो चलिए, इसके साथ वक्त हो गया है एक गाने का, तो अब कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं?
3: हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी.
0: ओह, वेरी अमेजिंग सॉन्ग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल. ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है इसने और करेगा. एक एक वर्ड मोती जैसा है. तो चलिए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में कल हो ना हो फिल्म का ये गाना.

0: दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो जितनी भी जिंदगी मिली है, जितना भी वक्त बचा है, उसे बदल लीजिए, उसे जी लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलेशिया से ये क्वेश्चन आया है। 34 ईयर्स ओल्ड मदर हैं ये, और इनके 3 बच्चे हैं जो कि 5 साल से छोटे हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर नीति ने जो लास्ट एपिसोड में कहा था कि आप कंपार्टमेंटलाइज करना सीखें अपनी चीज़ों को, तो क्या प्रायोरिटी ज़रूरी नहीं है?
1: एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बट बेटा प्रायोरिटाइजिंग एंड कंपार्टमेंटलाइजिंग गो टुगेदर। आप कंपार्टमेंटलाइज करोगे तो प्रायोरिटाइज कर सकते हो, अदरवाइज प्रायोरिटी में ही खो जाते हो। दूसरा, मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप एंग्शियस होते हो, एजिटेटेड होते हो, तो आपके जो ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। उससे क्या है, हमारा डोपामिन कम हो जाता है, तो आप क्लियरली सोच नहीं पाते। कंपार्टमेंटलाइज करने से क्या होता है, कंपार्टलाइज अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ, लिस्ट बनाना। जैसे लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बनाई है कि ये मेरे काम है, तो एक महीने के काम आप लिख सकते हैं, 1 वीक के काम लिख सकते हैं। फिर जैसे जैसे काम आप देखते हो, फिर उनको प्रायोरिटाइज करके आप स्टार कर लो या हाईलाइट कर लो उनको। फिर आप वेदर आप फोन वाले हो या पेपर वाले हो, फिर उनको जैसे जैसे डिलीट करते हो ना, एक दिमाग को, लाइक मैंने पहले बोला था, दिमाग में कुछ सांस लेने का टाइम मिल जाता है, तो उससे क्या है, वो रिलैक्सेशन हो जाती है। तो प्रायोरिटाइजिंग कंपार्टमेंटलाइजिंग कोई बहुत फर्क नहीं है, दे गो हैंड इन हैंड। और उसमें भी रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दिस इज ओनली अ फ्रेमवर्क। ब्रीफली तो मैं यही आंसर कर पाऊंगी, बट दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई स्पोक, जो पीछे किसी लड़की ने मेरे से पूछा था अबाउट एग्जाम। सो यू नो इट्स समवॉट सिमिलर।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर नीति, आपसे बात करके सारी उलझने जैसे सुलझ सी जाती हैं, और आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ पर बात करना पहला कदम है बेहतर कल की तरफ। जी हाँ, आज का सफ़र हमें यही याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। अपने मन को समझिए, सपोर्ट दीजिए और लीजिए भी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में डॉक्टर नीति हमारे साथ फिर से होंगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी बात है, तो हमें ज़रूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी है radiowithricha@gmail.com। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, नमस्कार। सुनते हैं ये गाना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने से लिखा है, एकला चलो रे। टेक केयर।